नमस्कार अंबाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 16 मई 2026 शनिवार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या 2083 विक्रम संवत। अंबाला में सूर्य उदय हुआ है 5:28 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:10 पर। आज इंटरनेशनल डे ऑफ फ्लाइट सेलिब्रेशन भी मनाया जा रहा है।

महापुरुषों के वचन श्रवण करके जिन्होंने उस तरफ अपना मुख कर लिया, उन्हीं के हिस्से लोक परलोक का संवरना आ गया। वरना तो जिसको सबसे अच्छा युग मानते हैं, उसी सतयुग में भक्त प्रह्लाद जैसे को उसी के पिता ने होलिका का सहारा लेकर जलाने का प्रयास किया, और त्रेता जैसे युग में भी ककई का इस्तेमाल करके मंत्रा चाल चलती रही।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: रेडियो वितस्ता 90.0 MHz पर, घर घर की आवाज। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। हमारे अगले प्रोग्राम की प्रतीक्षा।

प्रस्तुत है कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 13। कार्यक्रम आधारित है लखनऊ से त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष के गजल संग्रह दिल सूफियाना हो गया और त्रिवेणी की कुंडलियां पर। सहयोग आरजे किरनी, रिकॉर्ड एडिट निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता भारत सोपोरी।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी, लेके आया हूँ वितस्ता गीत माला का एक नया एपिसोड। आज के इस कार्यक्रम में जिस महान लेखक की हम कविताएं गजलें आपके लिए पढ़ेंगे और उसके साथ जुड़े कुछ संगीत भी सुनाएंगे, उनके बारे में कई लेखकों ने अपनी राय इस तरह से दी है। ज्ञानेंद्र साज जी, संपादक जर्जर कश्ती, वो इनके बारे में लिखते हैं, इस गजल संग्रह के बारे में कुछ कहने के लिए बहुत कुछ कहना शेष रह जाएगा। इन्होंने इन गजलों के साथ काफी मेहनत की है, जो हर गजल के हर शेर में साफ स्पष्ट दिख रहा है। उन्होंने जीवन के हर पहलू पर देखा है, सोचा है और लिखा है। वे आगे लिखते हैं, माँ ही बच्चों की प्रथम गुरु है, उसी से बहुत कुछ ऐसी सीख मिलती है जो मानव जीवन में कदम कदम पर काम आती है। तमाम अंधेरों से उजाला माँ की सीख से प्राप्त होता है। तीरगी में रोशनी का द्वार माँ से ही मिला, सादगी में बंदगी का सार माँ से ही मिला। डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी लिखते हैं, गजल अपने महबूब से बातें करने का नाम है, इसलिए गजल में चंद शेर होते हैं और हर शेर अपने आप में भरपूर और मुकम्मल होने के साथ एक दूसरे से जुदा होते हैं, लेकिन काफिया और रदीफ इन्हें आपस में बांध के रखता है, जिससे यह तमाम शेर गजल में तब्दील हो जाते हैं। आगे वे इनके बारे में लिखते हैं कि दिल सूफियाना हो गया कि पहली गजल के अशार देखिए। अशार यूं है, कितनी बेबस जिंदगी है देखिए तो, दर्द की बहती नदी है देखिए तो, यार के गम से दुखी है आजकल हम, आंख अशकों से भरी है देखिए तो। डॉक्टर शंभुनाथ इनके बारे में लिखते हैं, नारी के गृहिणी रूप का सम्मान करते हुए उसकी विवशता को इन्होंने निम्नवत व्यक्त किया है, उसी के प्यार से ही घर सदा गुलजार होता है, मगर गृहिणी की किस्मत में कहां इतवार होता है। ये शब्द जिस महान लेखक के बारे में लिखे हैं, वो आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगे गजलों के माध्यम से। वे है लखनऊ से प्रयागराज में जन्मे त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष। त्रिवेणी प्रसाद मनीष जी लिखते हैं, मैं आभारी हूं वरिष्ठ गजलकार श्री ज्ञानेंद्र साज जी का मुझे सदैव गजल गोई हेतु प्रोत्साहित करने के लिए तथा इस कृति की पांडुलिपि का अवगाहन कर उसके प्रति अपने विशेष उद्गार लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए मैं आभारी हूं। वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती मंजू सक्सेना जी का इस कृति की पांडुलिपि को पढ़कर इसे अपनी सुधि शुभाशंसा प्रदान करने के लिए मैं आभारी हूं। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी जी का इस कृति की पांडुलिपि को पढ़कर इसको अपनी मंगल कामना देने के लिए मैं अपना अति विशिष्ट आभार अर्पित करता हूं। त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष। आज हम इस वितस्ता गीतमाला कार्यक्रम एपिसोड 13 में त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी के गजल संग्रह है दिल सूफियाना हो गया और त्रिवेणी की कुंडलियां संग्रह से हम कुछ कविताएं और कुंडलियां सुनाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। गजलों को सुना नहीं जाता, बल्कि गजलों को महसूस किया जाता है दिल से। हमें आशा है त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी की जो गजलें हैं वो हम आप तक उसी अंदाज से पहुंचाने की कोशिश करेंगे जैसे उन्होंने उनको पिरोया है। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की वितस्ता गीतमाला 13। पेश है कुछ गजलें त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी के गजल संग्रह है दिल सूफियाना हो गया से। त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी लिखते हैं,
آندھیوں کے دور میں بھی حوصلہ رکھیں گے ہم, مشکلوں سے جوجھنے کا سلسلہ رکھیں گے ہم, ہر برائی کا کریں گے راہ میں نت سامنا, نیک کرموں سے ہمیشہ واسطہ رکھیں گے ہم, سجنوں کے روپ کو اس لوک میں پہچان کر درجنوں سے زندگی بھر فاصلہ رکھیں گے ہم, نفرتوں کی مار سہتے اس نئے سنسار میں دھیان میں انسانیت کا فلسفہ رکھیں گے ہم, دور کر کے دل سے ساری الجھنوں کے باو کو جیت کی قائم ہمیشہ سلسلہ رکھیں گے ہم, چاہتوں کی ڈور کو کس کر بہت ہے تھامنا, دور جیون سے جہاں کی واسنا رکھیں گے ہم, رہنماؤں کی صلاحوں کو ضروری مان کر دوستوں کی خود بنا کر تعلقہ رکھیں گے ہم, دوستوں کی خود بنا کر تعلقہ رکھیں گے ہم.

त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी लिखते हैं, मंजिलें मिलती नहीं आराम से, जिंदगी की शान अच्छे काम से, तीरगी का खौफ क्यों दिल में रहे, रोशनी हो चाहतों की शाम से, हर घड़ी इंसानियत की बात कर, प्यार हो लोगों को तेरे नाम से, रोक देना काफिले सब जुर्म के, जोड़ लो दिल अमन के पैगाम से, होश में लाए जो दिल बेहोश को, आशिकी हो ऐसे दिलकश जाम से, नौनिहालों के लिए वरदान जो, जोड़ना मन को सदा उस दाम से, फर्ज तेरा है नहीं बस देखना, काम को जोड़ो नए आयाम से, काम को जोड़ो नए आयाम से।

मनीष जी एक और गजल में लिखते हैं, इश्क के जोश में जग बुलाते रहे, आशिकी के करम को निभाते रहे, ख्वाब बुनते रहे प्यार का आशियां, आस के हौसले हम बढ़ाते रहे, वक्त बनता रहा जिंदगी की कजा, चाह के दौर सब रंग लाते रहे, बार बढ़ता रहा दर्दो गम का यहां, बोझ सारा खुशी से उठाते रहे, नाम बाकी सभी भूलते ही गए, आपको नाम लेकर बुलाते रहे, देखकर आंधियां राह बदली नहीं, बेखुदी में खुशी सी मनाते रहे, खौफ देती रहे तीरगी हर कदम, दीप विश्वास के हम जलाते रहे, दीप विश्वास के हम जलाते रहे। एक और गजल में मनीष जी लिखते हैं, देखकर हैरान कितना अब जमाना हो गया, उनका मेरे दिल के अंदर अब ठिकाना हो गया, चाहता हूं साथ उनका लोक में आठों पहर, जिंदगी में इश्क का अच्छा बहाना हो गया, चैन मिलता है सदा उनके हंसी दीदार से, गीत उनके होंठ का मेरा तराना हो गया, दूर रहकर भी सदा ही पास आते हैं नजर, जज्बाए दिल मेरा इतना आशिकाना हो गया, आशिकी के गुल निखरते जा रहे हैं हर तरफ, उनके घर जो अब तो मेरा आना जाना हो गया, देखते ही देखते ये बेखुदी बढ़ती गई, शौक नजरों के लिए मैं ही निशाना हो गया, संग उनके भूल जाता हूं मैं अपनी मुफलिसी, साथ में उनके सफर मेरा सुहाना हो गया, धड़कनों में अब समाई बस सनम की बंदगी, प्यार में उनके मेरा दिल सूफियाना हो गया, प्यार में उनके मेरा दिल सूफियाना हो गया।

0: व्यवस्था रेडियो आपके जीवन का प्रवाह।
1: त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी एक और गजल में लिखते हैं, हर घड़ी लगता कि जैसे कि हरारत है मुझे, हो गई शायद जमाने से मोहब्बत है मुझे, देख के नजारे जिंदगी में आजकल, रोज मिलती है नई कोई नसीहत है मुझे, ख्वाब के आगोश में रहना लुभाता है सदा, बोझ सी लगती जमाने की हकीकत है मुझे, इल्म काफी है हर एक शय का जमाने की, मगर लग रहा अब दर्द की काफी जरूरत है मुझे, मौन रहकर मैं निहारूं जब कभी उनको कहीं, सोचते हैं वो कि उनसे कुछ शिकायत है मुझे, देखकर व्यापार में मसरूफ लोगों का चलन, जिंदगी लगती हमेशा बस तिजारत है मुझे, पूछिए मत ये खुदा से वास्ता क्या है भला, जान से प्यारी खुदा की बस इबादत है मुझे, जान से प्यारी खुदा की बस इबादत है मुझे।

मनीष जी एक और गजल में लिखते हैं, तुम्हारे प्यार के दम पर नई दुनिया बसाई है, मुझे तुझ में नजर आती सदा सारी खुदाई है, रहे जो पास तू मेरे सभी कुछ भूल जाता मैं, सही जाती नहीं मुझसे सनम तेरी जुदाई है, बड़ी मीठी जुबां तेरी उड़ाती होश है मेरा, खुदा के पास भी कोई नहीं इसकी दवाई है, कभी सपनों में आकर के छटा दिलकश दिखा देना, तुम्हारे ख्वाब ने मन में नई चाहत जगाई है, नहीं आसान है उसको दबाना या बुझाना अब, गलत फहमी की तुमने आग जो इतनी लगाई है, यही सब सोचकर पल पल सुकून के साथ हूं रहता, मुझे हासिल जमाने में तुम्हारी रहनुमाई है, मुझे हासिल जमाने में तुम्हारी रहनुमाई है।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। कार्यक्रम जारी है, वितस्ता गीतमाला एपिसोड 13। आज का ये एपिसोड आधारित है लखनऊ से त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी के गजल संग्रह दिल सूफियाना हो गया है पर। मनीष जी इस गजल संग्रह में लिखते हैं, दोस्ती को जहां में निभाया बहुत, दुश्मनों ने मगर आजमाया बहुत, जब कभी जिंदगी कुछ लगी रूठने, हौसला रख उससे है मनाया बहुत, जब मिले राह में बेखबर रहनुमा, दर्द अपना उन्हें भी सुनाया बहुत, इश्क की रोशनी जब उजाला बनी, तीरगी को भी तेवर दिखाया बहुत, संग उसके कहां इल्म या होश था, दूर जब से गया याद आया बहुत, खो चुका हूं भले दौलतें मैं सभी, बंदगी से खुदा की है पाया बहुत, बंदगी से खुदा की है पाया बहुत।

त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी एक गजल में लिखते हैं, दोस्तों की दुआ काम आती रही, खुशनुमा जिंदगी को बनाती रही, था अंधेरा घना राह में पर सदा तीरगी रोशनी को बुलाती रही, नींद आई कभी जो मुझे राह में ख्वाब कितने सुहाने दिखाती रही, चांदनी रात का कुछ हुआ वो असर इश्क की आरजू जिल मिलाती रही, पाऊ में खार कितने चुभे हैं मगर जिंदगी बारहा मुस्कुराती रही, राह में बन गए जब सनम रहनुमा बंदगी आरजू में समाती रही, बंदगी आरजू में समाती रही।

0: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
1: त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी ने अनेक पुस्तकें हमें भेजी, उसमें से एक है त्रिवेणी की कुंडलियां। इन कुंडलियों में से एक में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा और इसका शीर्षक है माता। मां का वर्णन प्यार, त्याग, धैर्य और शक्ति का संगम है। वो हमारी पहली दोस्त, गुरु और सबसे सुरक्षित जगह होती है, जो निस्वार्थ भाव से परिवार के लिए अपना जीवन समर्पित करती है, बच्चों के चरित्र और आत्मविश्वास का निर्माण करती है और हर मुश्किल में साथ देती है, जिससे किसी शब्द में बांधना मुश्किल है। त्रिवेणी की कुंडलियां, इसमें त्रिवेणी जी ने मां के बारे में क्या वर्णन किया है, आइए वो मैं पढ़ता हूं। माता बच्चों के लिए प्रेरक प्राण अनूप, मानव मानक आदि गुरु, देवी लोक स्वरूप, देवी लोक स्वरूप जगत की वंदन माला, मातु शरण संचार परम सौभाग्य निराला। कहे त्रिवेणी प्राण गीत ये मन से गाता, परम इश्क का स्वरूप लोक जीवन में माता। माता सृजन काव्य में देवी दर्शन चित्र, कभी बाल मन प्रेरणा कभी सहायक मित्र, कभी सहायक मित्र जगत में राह सुझाए, मातु वचन अनमोल धरा को स्वर्ग बनाए। कहे त्रिवेणी प्राण भाव से लगन लगाता, जग संवर्धन मूल सदा सुध संयम माता। माता शब्दों से परे दिव्य लोक संसर्ग, मां महिमा से जग धरा बनती है सम स्वर्ग, बनती है सम स्वर्ग सृष्टि मां गरिमा धारे, मातु कृपा से धन्य जगत के चांद सितारे। कहे त्रिवेणी प्राण सत्य के दीप जलाता, वेद उपनिषद ज्ञान सहज जीवन में माता। माता क्या है लोक में बच्चों को कित ज्ञान, पर ज्ञानी विद्वान को होता मां का भान, होता मां का भान ध्यान कर उसकी महिमा, मातु शरण का मोल सदा जग जैविक गरिमा। कहे त्रिवेणी प्राण सहज शैली अपनाता, दिव्य गुणों की खान सभी बच्चों की माता। माता के आशीष से विकसित बचपन बाल, मातु शरण के अंक में बच्चे देवी माल, बच्चे देवी माल धार अभिनव अभिलाषा, मां ममता संचार बिना भव बंधन भाषा। कहे त्रिवेणी प्राण नवल उत्साह जगाता, भूमंडल संचार सभी जग रूपक माता। माता नारी रूप का सबसे उन्नत तार, मां ममता संचार का सहज लोक आधार, सहज लोक आधार सफल जग रूप सुधारे, मातु शरण में लोग पनपते पांव पसारे। कहे त्रिवेणी प्राण नवल सुख स्वप्न सजाता, प्राण वायु की धार लोग हित प्रेरक माता। माता सम्मुख नत सदा देव असुर का मान, राम भरत रावण सहित कंस कृष्ण संधान, कंस कृष्ण संधान खोजते मातु यशोदा, मां मंगल आवास नित शुभ प्रेम गरोंदा। कहे त्रिवेणी प्राण छंद नव भाव बनाता, दिव्य छंद आधार जगत में मानक माता, दिव्य छंद आधार जगत में मानक माता।

0: ये था आज का कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 13, जो आधारित था लखनऊ से त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी के गजल संग्रह दिल सूफियाना हो गया और त्रिवेणी की कुंडलियां, जिसमें हमने कुंडलियों में एक पढ़ने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, अगर कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। त्रिवेणी प्रसाद दुबे जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने अपने कविता संग्रह गजल संग्रह और कुंडलियां हमें भेजी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कार्यक्रम रेडियो वितस्ता टीम की ओर से एक छोटी सी भेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको और सभी श्रोताओं को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं हमारे मेल आईडी radiovitasta@gmail.com पर, या हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर 7056413010 पर। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूँ आपसे किसी और कार्यक्रम में। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 13। आज आपने त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष के गजल संग्रह दिल सूफियाना हो गया और त्रिवेणी की कुंडलियां पर आधारित कार्यक्रम सुना। सहयोग आरजे किरनी, रिकॉर्ड एडिट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्स रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आरजे शिवानी। आज मैं आपके लिए एक और पॉजिटिव स्टोरी लेकर आई हूं, जिसका शीर्षक है एक साधे सब सधे। एक लड़के ने एक बार एक बहुत ही धनवान व्यक्ति को देखकर धनवान बनने का निश्चय किया। वह धन कमाने के लिए कई दिनों तक मेहनत कर धन कमाने के पीछे पड़ा रहा और बहुत सारा पैसा कमा लिया। इसी बीच उसकी मुलाकात एक विद्वान से हो गई। विद्वान के ऐश्वर्य को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और अब उसने विद्वान बनने का निश्चय कर लिया और अगले ही दिन से धन कमाने को छोड़कर पढ़ने लिखने में लग गया। वह अभी अक्षर ज्ञान सीख ही पाया था कि इसी बीच उसकी मुलाकात एक संगीतज्ञ से हो गई। उसको संगीत में अधिक आकर्षण दिखाई दिया, इसीलिए उस दिन उसने पढ़ाई बंद कर दी और संगीत सीखने लग गया। इस तरह काफी उम्र बीत गई। ना वह धनी हो सका, ना विद्वान, और ना ही अच्छा संगीतज्ञ बन पाया। तब उसे बड़ा दुख हुआ। एक दिन उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े महात्मा से हुई। उसने महात्मा को अपने दुख का कारण बताया। महात्मा ने उसकी परेशानी सुनी और मुस्कुरा कर बोले, बेटा, दुनिया बड़ी ही चिकनी है। जहां भी जाओगे वहां कोई ना कोई आकर्षण जरूर दिखाई देगा। एक निश्चय कर लो और फिर जी जान से उसको प्राप्त करने के लिए लग जाओ। तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, नहीं तो दुनिया के झमेलों में यूं ही चक्कर खाते रहोगे। बार बार रुचि बदलने से कहीं भी पहुंच नहीं पाओगे। युवक को महात्मा की बात समझ में आई और वह एक लक्ष्य बनाकर उसी का अभ्यास करने लगा। वैसे भी कहा गया है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो भी कार्य करे पूरे तन मन से एकाग्रित होकर करे। बार बार इधर उधर भटकने से बेहतर यही है कि एक जगह टिक कर मेहनत की जाए, तभी सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अर्जुन की तरह सिर्फ हमें अपने लक्ष्य पर ही ध्यान देना चाहिए, तभी हम जीवन में अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। इसी के साथ अब लेती हूँ मैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए और अपने आसपास खुशियाँ बांटते रहिए और सुनते रहिए 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अम्बाला का अपना रेडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सिंगर नीलम नारायण। मेरा एक बहुत प्यारा वीडियो सॉन्ग मीठे मीठे इश्क की रिलीज हो चुका है, जो आप रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पे सुनने जा रहे हैं। अपना स्नेह जरूर दें। धन्यवाद।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

कुछ अच्छा सुनते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

खातर अरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विकसता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। प्रस्तुत है कार्यक्रम किरणी के साथ रेडियो पॉडकास्ट एपिसोड 15। आज का शीर्षक है थायराइड। कार्यक्रम को रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने और निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता RJ किरणी।

आप सुन रहे हैं किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर, आपकी जिंदगी की रवानी। आज का टॉपिक है थायराइड। थायराइड महिलाओं में 8 गुना अधिक देर रात तक जागने और स्ट्रेस से खतरा। थायराइड की समस्या हर उम्र के लोगों में बढ़ रही है। देश में लगभग 4 करोड़ लोग थायराइड डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, यानी हर 10 में से एक व्यक्ति को थायराइड संबंधी समस्याएं हैं। ये संख्या इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि इनमें से बहुत से लोग लक्षणों को सामान्य थकान, वजन बढ़ना या तनाव समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे में जानिए थायराइड से जुड़े कुछ सवाल और विशेषज्ञों से उनके जवाब। क्या वजन बढ़ना हमेशा थायराइड का संकेत है? नहीं, थायराइड की गड़बड़ी से मेटाबॉलिज्म धीमा होता है। हालांकि थायराइड हाइपर हाइपो में वजन बढ़ने के साथ घटता भी है। यदि वजन में फर्क के साथ साथ थकान, बाल जड़ना, त्वचा में रूखापन हो तभी जांच करवाइए। क्या महिलाओं में थायराइड अधिक होता है? महिलाओं में पुरुष की तुलना में थायराइड से जुड़े विकार 8 गुना तक अधिक पाए जाते हैं। इसके पीछे हार्मोनल बदलाव जैसे मासिक धर्म, गर्भावस्था और मेनोपॉज अहम कारण है। महिलाओं में थायराइड के लक्षण: थकान, कमजोरी और सुस्ती, वजन बढ़ना या वजन घटना, पीरियड्स की समस्या, अनियमित मासिक धर्म, हल्का या भारी मासिक धर्म, शुष्क त्वचा, बालों का जड़ना, आयोडीन की कमी। थायराइड हार्मोन के उत्पाद के लिए आयोडीन आवश्यक है और आयोडीन की कमी से हाइपोथायरायडिज्म हो सकता है। तनावपूर्ण जीवन शैली शरीर के हार्मोनल संतुलन को बाधित कर सकती है, जिससे थायराइड की कार्य प्रणाली प्रभावित हो सकती है। आयोडीन युक्त नमक से थायराइड कम होता है। आयोडीन युक्त नमक ने गाइटर जैसी बीमारियों को कम किया है, पर ये ऑटो इम्यून थायराइड से सुरक्षा नहीं देता। फिर भी आधा चम्मच सफेद आयोडीन युक्त नमक खाना फायदेमंद है। क्या थायराइड हमें मूड को प्रभावित करता है? हाँ, थायराइड हार्मोन सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर को प्रभावित करती है। खासकर महिलाओं में ये डिप्रेशन, चिंता, चिड़चिड़ापन, भूलने की बीमारी और एकाग्रता की कमी का कारण बन सकता है। आम दिखने वाले लक्षण जो थायराइड के संकेत हो सकते हैं। थायराइड का असर केवल गर्दन या गले तक सीमित नहीं, इसके गुप्त लक्षण होते हैं। डिप्रेशन, थकान, याददाश्त कमजोर, महिलाओं में अनियमित पीरियड्स, बुजुर्गों में नींद की गड़बड़ी, अचानक दिल की धड़कन में गड़बड़ी, बच्चों में धीमा विकास, पढ़ाई में प्रदर्शन गिरना। क्यों आज के दौर में शहरों में थायराइड तेजी से बढ़ रहा है? शहरी जीवन शैली में तनाव, देर रात तक जागना, जंक फूड, प्रदूषण और फिजिकल इनएक्टिविटी काफ़ी हद तक शामिल है। ये सभी आदतें थायराइड को गहराई से प्रभावित कर रही हैं। खासकर आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोगों में हार्मोनल असंतुलन और स्लीप साइकिल की गड़बड़ी आम है। थायराइड को कंट्रोल में रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखें? खाना बनाते समय सफ़ेद आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। नींद की गुणवत्ता और तनाव पर ध्यान रखें। ये फूड्स फायदेमंद है। सूरजमुखी के बीज जिसमें सेलेनियम है, व कद्दू के बीज, मसूर दाल, हर तिमाही में T3, T4 व TSH जांच करवाएं। नियमित व्यायाम करें और वजन को नियंत्रित रखें। योग, ध्यान या अन्य तनाव कम करने वाले तरीकों का अभ्यास करें। नियमित रूप से डॉक्टर से जांच करवाएं। यदि थायराइड की समस्या का पता चलता है तुरंत उपचार करें। इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: तुशु बोजान FM 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हुन। बोजान रोजू पनेन पसंदीद बात।
3: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। ललेश्वरी, जिन्हें ललदेत या ललेश्वरी शिव योगिनी भी कहा जाता है, 14वीं शताब्दी की कश्मीरी संत कवियत्री और शिव दर्शन की प्रमुख साधिका थी। उन्होंने ललवाक नाम से जाने जाने वाले रहस्यमयी दोहों में जीवन, आत्मा और ईश्वर के गहरे सत्य व्यक्त किए। उनकी वाणी में भक्ति, दर्शन और मानवीय संवेदना का अद्भुत संगम मिलता है। ललेश्वरी ने समाज को बताया कि ईश्वर मन के भीतर है, बाहरी अडंबरों में नहीं। शिव योनि का अर्थ है शिव की सृजनात्मक ऊर्जा, अर्थात वह दिव्य स्रोत जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कश्मीर शिव दर्शन में शिव योनि को सृजन, चेतना और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ललेश्वरी की वाणी में शिव योनि का उल्लेख आत्मबोध और परम चेतना की अवस्था को समझाने के लिए आता है। ललवाक शब्द का अर्थ है लल यानी ललेश्वरी, के वाक यानी वचन या दोहे। ये छोटे छोटे दोहे या सूक्तियां हैं जिनमें उन्होंने साधना, आत्मज्ञान, प्रेम और सच्चे ईश्वर की अनुभूति को सरल भाषा में व्यक्त किया है। ये वाक आज भी कश्मीर की आत्मा की आवाज माने जाते हैं। हमने ललेश्वरी के ललवाक को हिंदी और कश्मीरी में तैयार कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम मानते हैं कि ये ललवाक हमारी जीवन का रास्ता आसान कर देती है। इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने। इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने। तो आइए सुनते हैं ललवाक की ये श्रृंखला।
4: आज का जो ललवाक माता ललेश्वरी शिव योगिनी का मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण ललवाक है। इस ललवाक में ललेश्वरी कहती हैं, मैं पहले कश्मीरी में आपको बताऊंगा, अकुई ओंकार युस नाय बिदरे, अकुई ओंकार युस नाय बिदरे, कुंभ ब्रह्मांडस सुंगरे, अक्सुई मंथर सतस करे, अक्सुई मंथर सतस करे, तस्सास मंथर क्या करे। लल कहती है जिस ओंकार को किसी ने अपनी नाभि में धारण कर लिया, नाभि मतलब बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे कश्मीर योग दर्शन में। नाभि हमारे सात कुंडलनी चक्रों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, और जब ओंकार की वो ध्वनि और वाइब्रेशन मेरे नाभि में केंद्रित हो जाती है तो ओम ही एक ब्रिज बन जाता है मेरे सेल्फ कॉन्शियसनेस के बीच में और उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के बीच में। हमें उस यूनिवर्सैलिटी का पता लगता है कि मैं अब केवल मैं नहीं हूं, मैं तो इस प्रकृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा हूं, इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा हूं। तो जब मैं भी वही बन जाता हूं तो फिर वो कहती है ता सास मंत्र क्या करे, फिर मुझे रिचुअल्स की कोई आवश्यकता नहीं, पूजा पाठ पद्धति यज्ञ इन सब की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, परंतु ये बड़ा जरूरी है समझना कि एक नर्सरी से लेके पीएचडी वाला मॉडल है, यानी शुरुआत तो आपको कहीं से करनी पड़ेगी। और जब वो शुरुआत करते हैं और करते करते करते आप अपनी नाभि में उस ओम को धारण कर लेते हैं, तो फिर आप उसी स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां पे आपको इन छोटी मोटी पद्धतियों की आवश्यकता नहीं होती। मैं नीजा जी से कहूंगा कि वो इस ललवाक को अपने सरस्वती के मुखमंडल से हम सब तक

0: सेकंड 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

अब्र की सिहाई से चांद ने जब देखा था, मसरत से सितारों ने तब ये सोचा था, ये घनेरे बादल हैं, कभी तो मिट जाएंगे, हमारी भी तकदीर बदल जाएगी, कभी हम भी जगमगाएंगे, पुर अमन सफर जारी था, दिल में गुमा कुछ और था, ईमान उनका इस कदर बह जाएगा, दिल को कब ये एहसास था, अभी अभी तो नजरें मिली थी उनसे, अभी तो समझे थे दिल की बात, आने लगे थे यूं ही करीब, आने लगे थे यूं ही करीब, पर फासलों ने फिर से रास्ते रोके, फासलों ने फिर से रास्ते रोके, अब्र की सिहाई से चांद ने जब देखा था, मसरत से सितारों ने तब ये सोचा था।

ख्वाबों की सरहदें नहीं होती। रोज चिलक जाता हूं मैं उस पर अपने यार से मिलने, बातें करता हूं हां देर शाम तक बातें करता हूं, पुष्पहार पहनाता हूं, फूलों की बारिश मौसम खिजां अक्सर मेरे गीतों को गुनगुनाना अभी भी तुम्हारी फितरत में शामिल है। अपने यार को मीना बाजार की सैर भी कराता हूं, तुम्हारी नाजुक कलाइयों में कंगन पहनाता हूं और इन बादामी आंखों में कचरा लगाता हूं। बंद आंखों के ख्वाबों की सरहदें नहीं होती। रोज चला जाता हूं मैं उस पर अपने यार से मिलने, तुम हुस्न की हो मिसाल, हो पूनम का चांद, जिंदगियों की हो सहर, हो ढलती शामों की मखमली नींद।

परियां फैलाती हैं मन का आंचल, भर देती हैं खुशियों से दामन, अपने साथ कहीं दूर तक ले जाती हैं गगन के उस पार, अपनी मुस्कुराती दुनिया में जहां फरिश्ते राहों में सजदा करते हैं, जहां यकायक फूलों की बारिश होती है, जहां चांद सितारे हमारे पांव छूने में गुरेज नहीं करते हैं, जहां रूह रक्स करते हैं और जिस्म प्यार का इजहार।

कहां हैं दूर के मुसाफिर, वो चलते हैं अपनी परछाई के हमराह, अपने साए के संग संग, और खोजते हैं अपनी खोई हुई पहचान को। ये दुनिया जंगल की तरह है, जहां भीड़ है अनसुनी रूहों की, अजली लाशों की। इस जारी सफर में हम अपने रिश्तों की अहमियत को भूल चुके हैं और भूलते जा रहे हैं इंसानियत का सबक।

दोस्तों, आज की ये महफिल बस यहीं तक। चाहेंगे आपसे इजाजत।

0: ਤੁਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ 90.0 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਪਾ ਰੇਡੀਓ ਵਿਤਸਤਾ ਅੰਬਾਲੇ ਕਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਕੇ ਗਾਣੇ।
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
2: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
3: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: पेश है कार्यक्रम फिल्मी किस्से अंक 2, प्रस्तुतकर्ता दीपक कश्यप।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं आपका रेडियो दोस्त दीपक आपका स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम फिल्मी किस्से में। हम हर मर्तबा बात करते हैं किसी भी एक गोल्डन एरा मूवी के बारे में और जानते हैं उनके अनकहे किस्से और सुनते हैं उस फिल्म के गीत। आज हम बात करेंगे 1971 की सुपर डुपर हिट फिल्म के बारे में, जो कि गुलशन नंदा जी की एक नावल पर आधारित थी और इस फिल्म के निर्देशक थे शक्ति सामंत। लीड रोल में थे उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना जी, आशा पारेख और उस समय के जाने माने विलन प्रेम चोपड़ा। और कहा जाता है इसी फिल्म में प्रेम चोपड़ा विलन के रूप में हिंदी सिनेमा में उभरे थे और ये फिल्म थी कटी पतंग। इस फिल्म के कंपोजर थे आरडी बर्मन साहब और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। इस फिल्म के किस्से जारी रहेंगे, फिलहाल सुनाता हूँ एक गीत किशोर कुमार जी की आवाज में।

गीत तो था बहुत सुहाना और हम बात कर रहे हैं फिल्म कटी पतंग की, जिसे रिलीज हुए 52 साल पूरे हो चुके हैं। हम सब ने इस फिल्म की लीड अदाकारा के रूप में आशा पारेख जी को देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं शक्ति सामंत जो इस फिल्म के निर्देशक थे, उनकी पहली पसंद आशा पारेख नहीं थी और इससे पहले राजेश खन्ना जी के साथ आशा पारेख की बहारों के सपने फिल्म आई थी जो कि इतनी नहीं चल पाई। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आशा पारेख जी के पास यह रोल कैसे आया और कैसे उन्होंने इसे बाखूबी निभाया, ये भी आपको बताएंगे। इस किस्से को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। उससे पहले सुनाता हूँ आपको मोहब्बत भरा गीत।

उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। अब आते हैं हमारे फिल्मी किस्से पर। हम बात कर रहे थे किस तरह यह रोल आशा पारेख जी को मिला। कहा जाता है उस समय शक्ति सामंत जी की पहली पसंद शर्मिला टैगोर थी और सबसे पहले यह रोल उन्हें ही ऑफर हुआ था, लेकिन उस समय वह माँ बनने वाली थी जिस वजह से उन्होंने इस रोल के लिए मना कर दिया था। यह फिल्म उस समय के संवेदनशील विषय पर बनी थी जो था विधवा विवाह, और जब आशा पारेख जी ने यह रोल सुना तो इस वुमन सेंट्रिक फिल्म के लिए झट से हाँ कर दी, और इस तरह हमें मिली कटी पतंग की मधु। और भी किस्से बाकी हैं, उससे पहले सुनिए एक प्यारा सा गीत और लौटकर बताएंगे इस फिल्म के टाइटल ट्रैक का किस्सा।

गाना हुआ खत्म, अब आप लौट आइए उन फिल्मी किस्सों की तरफ। अगला किस्सा है इस फिल्म के टाइटल ट्रैक का। जैसे कि हम बात कर रहे थे, यह फिल्म बहुत संवेदनशील विषय पर बनी थी और राजेश खन्ना तब तक बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। उसके बावजूद उन्होंने एक महिला प्रधान फिल्म में काम करने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। इस फिल्म का ज्यादातर दारोमदार आशा पारेख जी पर था, लेकिन फिल्म के सारे हिट गाने राजेश खन्ना जी पर फिल्माए गए थे। परंतु फिल्म का शीर्षक गीत, जो कि लता जी ने गाया है, वह आशा जी पर फिल्माया गया था। आशा जी ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी कहा है, जब भी मैं ये गाना सुनती हूँ तो मेरे दिल में हुक सी उठती है। आइए अब आपको यह गीत भी सुना देता हूँ।

अब हम लौट आए हैं कटी पतंग से जुड़ा एक और किस्सा लेकर। इस फिल्म के ना केवल गाने मशहूर हुए बल्कि इस फिल्म ने उस सदी के खलनायक और खलनायिका को भी पहचान दी और लोगों के बीच मशहूर भी किया, जिसके बाद उन्होंने खलनायक के रूप में कई किरदार निभाए। और साथ ही साथ इस फिल्म के एक गाने ने बिंदु जी को रातों रात हिंदी सिनेमा की आइटम गर्ल बना दिया। अब सुनाने जा रहा हूँ आपको वही गाना आशा भोसले जी की आवाज में।

शबनम। प्यार से लोग मुझे कहते हैं शबो,

पहचाना? मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो राज की, पर राज राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

रोज रात भर शहनाई बजती रही, मैं थी तुम थी और वो शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? नीना, मीना, अंजू, मंजू या

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर फिल्मी किस्से एपिसोड 2। उम्मीद करता हूँ किस्से सुनकर आपको अच्छा लगा होगा और इस फिल्म के बारे में नई जानकारी मिली होगी। अब बढ़ते हैं इस कार्यक्रम के अंत की ओर। आपको सुनाते हैं एक और किस्सा जो कि जुड़ा है सचिन देव बर्मन जी से। कहा जाता है राजेश खन्ना जी की इससे पहले बनी फिल्म आराधना में बतौर संगीतकार सचिन देव बर्मन ने काम किया था, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के कारण उनके बेटे राहुल देव बर्मन ने उस फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग करवाई। बाद में कटी पतंग में जब आरडी बर्मन को संगीत निर्देशन पर प्रयोग करने का खुला अवसर मिला तो उन्होंने कमाल संगीत बनाए जो कि लोगों को बहुत पसंद आए। अब इसी के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ एक और गीत के साथ। यह एपिसोड आपको कैसा लगा और अगले अंक में आप कौन सी फिल्म के किस्से सुनना पसंद करेंगे, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7056413010। आपसे जल्द मुलाकात होगी और भी फिल्मी किस्सों के साथ। सुनते रहिए FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफ़र जिंदगी का।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी किस्से अंक 2, रिकॉर्ड एडिट और प्रस्तुतकर्ता दीपक कश्यप, लेखक एवं निर्देशन सेजल पुंज। ये थी 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता की पेशकश।

0: अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।
3: पेश है कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए, जरा याद करो कुर्बानी। रिकॉर्ड किया राहुल लियान ने, प्रस्तुत करेंगे नरेश शर्मा। एडिट व निर्देशन भारत सपोरी।

0: नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। सबसे बड़ा त्याग क्या है? अपने आप को ही नछावर कर देना। और ये त्याग किया है दोस्तों आपने, क्योंकि आपके कारण ही तो हम चैन की नींद सोते हैं। सरहदों पर आपके होते हुए दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाने की जरूरत भी नहीं कर सकता। आपके इस एहसान का बदला तो हम किसी भी तरह नहीं चुका सकते। हाँ, आपके दिल की आवाज बनकर उन तक आपकी आवाज हम पहुंचाकर आपके दिलों को कुछ सुकून तो दे ही सकते हैं। FM 90.0 MHz पर हम हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका अपना रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। हम लेकर आए हैं फौजी भाइयों के लिए एक विशेष कार्यक्रम, जरा याद करो कुर्बानी।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: दोस्तों, अगर आप कोई विशेष गीत सुनना चाहते हो या अपने किसी खास को कोई खास गीत सुनाना चाहते हो तो हमें हमारे टेलीफोन नंबर 7056413010 पर कॉल करके बताइए। हम आपके अनुरोध पर आपकी पसंद का गीत आप कहेंगे तो उनके और आपके नाम के साथ और आपके संदेश के साथ प्रसारित करेंगे। गीत के अलावा भी अगर आपके परिवार में किसी का जन्मदिन है या कोई अन्य संदेश आप रेडियो के माध्यम से अपने परिजनों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें सिर्फ कॉल पर कर दीजिए, बाकी काम हमारा, हम बनेंगे ना आपके दिल के हम सफर। आइए शुरू करते हैं फौजी भाइयों के लिए हमारा विशेष उपहार, जरा याद करो कुर्बानी।

सच में यही होता है। जब कहकर आते हैं कि बस दो चार महीनों में ही वापिस आ रहा हूं, और किसी वजह से छुट्टी पास नहीं होती ना, उधर वो बेकरार होते हैं, इधर आप बेचैन होते हैं। दिल करता है किसी तरह से पंख लग जाएं और उड़कर पहुंच जाएं अपने महबूब की बाहों में, क्योंकि उधर से भी यही आवाज आ रही होती है कि

लेकिन जरूरी तो नहीं कि सब कुछ मन के मुताबिक ही हो। दोस्तों, आपके बलिदान और हिम्मत और त्याग की गूंज धरती की हर धड़कन में सुनाई देती है। आपके दिमाग को कर्तव्य ने बांध रखा होता है, बस दिल को कौन बांध सकता है? आज तो कोई नहीं बांध पाया। उधर उनका नहीं लगता, इधर आपका नहीं लगता, और दोनों दिलों से जो आवाज आती है वो आवाज होती है ये।

0: देश की सुरक्षा में तैनात फौजी भाइयों, सिर्फ आपके परिवारों की ही नहीं बल्कि पूरे देश की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। पिता, भाई, बहन, पत्नी सब आप पर गर्व महसूस करते हैं और आपकी वापसी का बेसब्री से इंतजार करते हैं। और हाँ, इंतजार तो आप भी बेसब्री से करते हैं। खट्टी मीठी कड़वी नमकीन भावनाओं को विराम तो तब मिलता है जब घर से चिट्ठी आती है।
1: चिट्ठी।

आपका समर्पण और साहस हम सबके लिए देशभक्ति का सच्चा उदाहरण है। हमें गर्व है कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ फौज हमारी रक्षा कर रही है। आपके साथ साथ आपके परिवारों का समर्पण और त्याग, वाकई ये सब कुछ काबिले तारीफ है। मिलन को आतुर प्रतीक्षारत नयन बिस्तर में अपने कोरों को पोंछते हुए दिल से लगाकर तुम्हारी तस्वीर को चूमकर बुदबुदाते हैं

हर फौजी भाई, चाहे वो किसी भी बटालियन में हो, किसी भी रैंक पर हो, हर रोज हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं। आपके इस साहस को पूरा देश प्रणाम करता है। हमारे लिए तो आप आदर्श हो ही, आप किसी और के भी तो हीरो हो जिन्होंने

फौजी भाइयों, पूरे भारतवासी आपके साथ खड़े हैं। आपकी हिम्मत और जज्बा हर दिल में बसता है, हमारे लिए और आपके लिए प्यार, मोहब्बत, घर परिवार, लेकिन आपके लिए तो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ देश सेवा है। इसके लिए आप कुछ सोचते ही नहीं, और ना ही आपके जीवन में शायद इसके अलावा कोई बात होती है। हम आपकी इस सोच की कदर करते हैं। अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, कुछ भी तो नहीं इसके अलावा जो आपके दिलो दिमाग पर हो, इसलिए उनकी शिकायत आपसे अक्सर ये रहती है।

दोस्तों अब अपने रेडियो दोस्त रेडियो हमसफर नरेश शर्मा को दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा इसी कार्यक्रम को एक नई सुगंध एक नया फ्लेवर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए जरा याद करो कुर्बानी। रिकॉर्ड किया राहुल लिया ने, प्रस्तुत किया नरेश शर्मा ने, एडिट व निर्देशन भारत सुपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।

सुनते रहो अपने पसंदीदा की। पेश है कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज के मेहमान हैं डॉक्टर नूपुर सिंह, जो FM 90.0 MHz के उद्घाटन पर शुभकामनाएं देने दिल्ली से आए थे। उनसे बात करेंगे श्री नरेश शर्मा।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता। रेडियो वितस्ता 90.0 FM और बेहद ही खुशी की बात है, रेडियो वितस्ता अब और आज से कम्युनिटी रेडियो बन चुका है और आप हमारी हर आवाज को सुन सकते हैं 90.0 FM पर। वही नाम लेकिन कुछ नए अंदाज के साथ में हम पेश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, आज हमारा जो उद्घाटन है आज के प्रोग्राम का, आज से हम लोग कम्युनिटी रेडियो के दायरे में आ गए हैं, तो मैं यहाँ पर दो शख्सियतों का विशेष रूप से उल्लेख करना पसंद करूँगा। पहली शख्सियत है हमारे मेंटर श्री रमेश मराठा जी। एक वो आवाज़ जिससे हमने बहुत कुछ सीखा, आज भी सीख रहे हैं और उम्मीद है जब तक जिंदा रहेंगे हम इनसे सीखते रहेंगे। इनको सुनता हूँ तो लगता है कि सागर की गहराइयों से कोई आवाज़ देकर एहसास दिला रहा है कि फीलिंग्स किसको कहते हैं। और दूसरी आवाज़ जो विशेष रूप से दिल्ली से आज इस विशेष अवसर पर हमारे साथ मौजूद हुई हैं, नूपुर सिंह जी। नूपुर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम के पहले प्रसारण के बीच में और आज इस विशेष अवसर के ऊपर। करीब 3-4 साल पहले हमने इनसे एक इंटरव्यू की थी, उनकी आवाज, उनका अंदाज आज भी उसी तरह से हमारे कानों में गूंज रहा है। ये तो हमारे साथ जो बीत रही है, बीती है वो आइए जानना चाहता हूं कि नूपुर जी, ये पिछले 3 साल से कुछ ज्यादा अरसा हो गया है आपको रेडियो वितस्ता के साथ जुड़े हुए, कैसा महसूस करती हैं आप इस परिवार के साथ जुड़ने के पश्चात और क्या प्रभाव इसने आपके ऊपर डाला है? आपके मन में एक रेडियो की छवि थी जो मैं समझता हूँ कुछ और थी, अब आप रेडियो के विषय में क्या सोचती हैं?
1: सबसे पहले तो थैंक्स बोलती हूँ कि मैं जुड़ी हूँ रेडियो वितस्ता से, और मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि जब पहली बार मैं कनेक्ट हुई थी आप लोगों से जिस समय, तो कहीं मन में एक अंदेशा था कि कहाँ बात कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कौन है, कैसे हैं, लेकिन जब इंटरव्यू हुआ और उसके बाद जब सब कुछ ब्रॉडकास्ट हुआ तो एक अलग ही चीज़ निकल के आई थी जो आज तक कहीं मन के बहुत गहराई तक है, वो मुझे छू गया। और दूसरी बात ये है कि जो रेडियो वितस्ता के थ्रू जो आपके साथ मेरा संबंध रहा या फिर हमारे जो द ग्रेट भरत सुपुरी जी हैं उनके साथ, वो एक अलग ही रिलेशन है मेरा, वो उसको डिफाइन करना मुश्किल है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो मन के भाव से है, बहुत गहराई से है। और वो जर्नी अभी तक की बहुत ही खूबसूरत मेमोरी के रूप में है मेरे लिए। अभी तक का जो देखती हूँ आप लोगों का जो ये रेडियो वितस्ता का रहा सब कुछ, बहुत ही सुंदर अब तक की जर्नी है इसकी, बहुत ही सुंदर रही है, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने उसको सुंदर बनाया, रचा है, इतनी मेहनत करके इतने सारे लाइव शोज देखे जिसमें फेसबुक हो या किसी भी सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे आपको,

0: जिक्र किया अभी भरत सपोरी हमारे जो फाउंडर डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रेडियो विदस्ता के, उनका मेरे पास कोई शक नहीं है कि मैं भरत सपोरी जी का कोई शुक्रिया अदा कर सकूं। क्यों? इन्होंने यकीन मानिए कि लोग अपने बच्चे को पालने में अपनी जिंदगी लगा देते हैं, इन्होंने रेडियो स्टेशन रेडियो विदस्ता को पालने में, रेडियो विदस्ता को खड़ा करने में अपनी जिंदगी का एक अहम समय इसके बीच में दिया है। कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसके लिए मैं कह सकूं कि भरत सपोरी इस परिचय से यहाँ पर इनका परिचय हो सकता है। क्यों? जितना कुछ इनके पास में था इन्होंने सब कुछ सिर्फ रेडियो के उत्थान के लिए लगाया। रही बात ये कि कार्यक्रमों की, हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं, आपने भी सुना लॉकडाउन के दौरान से पहले का ये सिलसिला चलता चला आ रहा है। मुझे तो ईश्वर की एक बहुत अनुकंपा मेरे ऊपर रही है कि जब पहले मैंने प्रोग्राम आपके साथ में किया था, उस टाइम नूपुर सिंह एक हिंदुस्तान की जानी मानी गायिका हुआ करती थी, शायद ताज्जुब हो रहा होगा मेरे शब्दों पे कि हुआ करती थी, तो हिंदुस्तान की जानी मानी गायिका हुआ करती थी नूपुर सिंह, जिनके नाम का डंका बजता था उनकी गायकी में। और अनुकंपा जो ईश्वर की मेरे ऊपर रही है वो ये कि आज वो हिंदुस्तान की जानी मानी गायिका मेरी बेटी के रूप में मेरे सामने बैठी है और इस विशेष अवसर के ऊपर हमें विशेष तौर से बधाई देने के लिए दिल्ली से यहाँ आई है। प्रसन्नता का मतलब आप आलम न पूछिए, शब्द नहीं रहे हैं कि किस तरह से व्याख्यान करूं। थैंक यू बोलूंगा नहीं, क्योंकि बेटियों को शुक्रिया नहीं कहा जाता। हाँ, धन्यवाद जरूर कहूंगा कि आप यहाँ पर आए। उस वक्त भी आपने अपनी झलक छोड़ी और वो छाप जो छोड़ी ना अपने प्रोग्राम्स के दौरान, आज भी लोग बार बार आग्रह करते हैं कि हमको वो नूपुर जी वाला प्रोग्राम सुनाइए, वो नूपुर जी वाला प्रोग्राम सुनाइए। आइए आज उनकी एक गलतफहमी दूर किए देते हैं। तो आइए चंद लाइनें किसी भी गीत की, बिना किसी संगीत के हमको सुनाते हैं, आपको बता देते हैं कि नहीं, ये साक्षात नूपुर सिंह ही हैं जो सामने बैठी हुई। कुछ सुनाना चाहिए
1: जरूर जरूर श्रोताओं, क्यों नहीं। बड़ा मेरी खुशनसीबी है कि मैं कनेक्ट हूँ और आपका आशीर्वाद मुझे आज मिल रहा है। बहुत स्नेह है आपका। एक बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना लाइफ में क्या मायने रखता है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं कोशिश करती हूँ दो शब्द कुछ भी, वैसे सोचा तो कुछ भी नहीं है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कुछ। एक ही गाना है सदाबहार जो हमेशा मुझे फर्स्ट जब भी सोचती हूँ तो उसकी ही झलक आती है, उसके बाद कुछ और आता है।

0: वास्तव में इसमें कोई शक नहीं है कि माँ सरस्वती ने विशेष रूप से आपके गले में ही आकर वास किया है। बहुत ही खूबसूरत गाती हैं आप। हाँ, ये एक बात जरूर कहूंगा कि इतना सुनने के बाद जो जितने हमारे श्रोता है ना, वो चाह रहे होंगे शरोज आप चुप कीजिए ना, नूपुर जी से कहिए ना कुछ और सुनाएं। तो मैं जानता हूं कि आप हमारी मेहमान हैं, मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं बिना किसी साज के, बिना किसी साजिंदों के, बिना किसी म्यूजिक के आपको बार बार कहूं कि आप कुछ सुनाइए, कुछ सुनाइए, कुछ सुनाइए। तो वो जो आपने सुनाया है अभी, बेहद ही खूबसूरत गीत लग जा गले से, वो शायद आपने हमारी फरमाइश में सुनाया था। आखिरी बार मैं कहूँगा, एक आखिरी फरमाइश इन श्रोताओं की जो आज विशेष रूप से हमारे इस विशेष उद्घाटन के अवसर के ऊपर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनके आग्रह के ऊपर कुछ भी चाहे दो ही लाइनें सुना दीजिए। मेरा वादा है इसके बाद मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप तीसरी बार फिर गाइए, थोड़ा सा सुना दीजिए, फिर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे और फिर कार्यक्रम को समापन की ओर धीरे धीरे आगे ले जाएंगे।
1: जी, कोशिश करते हैं। एक आशा जी ने गाया हुआ है, एक उनकी गजल है, मैं कोशिश करती हूँ।
0: जी।
1: सलोनो आसा सजन है और मैं हूँ, सलोनो आसा सजन है और मैं

0: बहुत खूब, बेहद ही खूबसूरत। तो आज तो क्योंकि बहुत उद्घाटन का अवसर है, बहुत भागदौड़ मची हुई है, सब तरफ भागादौड़ी का माहौल है, हम फिर किस दिन आपको नूपुर जी के साथ में साक्षात्कार का पूरा अंश दिखाएंगे। आज इस थोड़े से अंश के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। मैं
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: कवच में एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए।

0: ਤੁਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ 90.0 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਪਾ ਰੇਡੀਓ ਵਿਤਸਤਾ ਅੰਬਾਲੇ ਕਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਕੇ ਗਾਣੇ।
1: ਬੜਾਏ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰੇ FM 90.0 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
2: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।
1: ब्रदर आम आई रेडी, 1 2

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

सुनिए शबीर कुमार के दिल छूने वाले गाने हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
3: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: 남부 띵구 남부
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
3: www.sdcollegeambala.ac.in।
4: 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, लेके आए हैं हम आज के कृषि समाचार।
1: मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कृष्णा, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: चिप से कर सकेंगे श्रेष्ठ नस्लों का चयन, बीमारी की जांच आसान होगी, पशुधन की गुणवत्ता सुधरेगी। वैज्ञानिकों ने DNA सीक्वेंसिंग के आधार पर तैयार की चिप। राष्ट्रीय पशु अनुवंशिक संस्थान ब्यूरो NBAZR के वैज्ञानिकों ने पशुपालन क्षेत्र में बड़े बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया है। अब पशुओं की नस्ल और पितृत्व की सटीक पहचान के लिए सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमोरफिज्म यानी SNP आधारित अत्याधुनिक चिप तैयार की है। इस चिप में 6 लाख से अधिक SNP मार्कर शामिल है, जो बेड, बकरी, याक, कुत्ता, मुर्गी, ऊंट, सुअर और घोड़े की प्रजातियों के पूरे जीनोम को कवर करते हैं। इससे पशुओं के जीनोमिक पहचान आसान और अधिक विश्वसनीय हो सकेगी। ये चिप अलग अलग प्रजातियों और उनके कई नस्लों के DNA सीक्वेंसिंग के आधार पर तैयार की गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस चिप के जरिए श्रेष्ठ नस्लों की पहचान कर उन्हें बढ़ावा दिया जा सकेगा। इससे न केवल पशुधन की गुणवत्ता सुधरेगी बल्कि जैव विविधता का अध्ययन भी संभव होगा। NBAZR के निदेशक डॉक्टर NH मोहन का कहना है कि जीनोमिक सिलेक्शन के माध्यम से भविष्य में पशुओं की नस्ल सुधार प्रक्रिया को गति मिलेगी। इसे पशुपालकों को बेहतर उत्पादन देने वाले पशु चुनने में आसानी रहेगी। इसे नस्ल की शुद्धता की पुष्टि और पितृत्व की जांच वैज्ञानिक आधार पर संभव होगी। आने वाले समय में ये तकनीक देश के पशुधन विकास कार्यक्रमों में अहम भूमिका निभाएगी। पशुपालक को ये फायदे। चिप के जरिए पशुपालक बेहतर प्रजनन योजना बना सकेंगे। जीनोमिक डेटा के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले पशुओं का चयन किया जा सकेगा। साथ ही पशुओं की बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता को भी समझने में मदद मिलेगी। इस तरह से काम करती है SNP चिप। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमोरफिज्म चिप उन्नत जीनोमिक तकनीक है, जो DNA में मौजूद छोटे बदलावों की पहचान करती है। हर चिप में लाखों मार्कर होते हैं, जो पशु के पूरे जीनोम का विश्लेषण करते हैं। इससे नस्ल, पितृत्व और अनुवंशिक गुणों की सटीक जानकारी मिलती है, जो नस्ल सुधार और उत्पादन बढ़ाने में उपयोगी होगी।
1: पानी की समस्या व लागत ज्यादा आने पर धान छोड़कर की सफेद चंदन की खेती, कीमत 14,000 रुपए प्रति किलो तक। सोनीपत में किसानों ने स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की, हर वर्ष लाखों रुपए कमा रहे। सोनीपत के चिट्टाना में प्रगतिशील किसान कृष्ण ने रेतीली जमीन पर सफेद चंदन के पौधे लगाए हैं। ये पौधे 10 फीट ऊंचे हो गए हैं। बाजार में चंदन की लकड़ी की कीमत 14,000 रुपए प्रति किलो तक है। पौधों के बीच की खाली जगह का सदुपयोग करने के लिए सब्जी, फलदार पौधे और दलहन खेती कर रहे हैं। अनेक किसानों ने भी स्ट्रॉबेरी उगानी शुरू कर दी है और पास की मार्केट में इनकी मांग बढ़ रही है। गांव में काफी हिस्सा ऐसा है जहां नहरी पानी नहीं जा रहा। चंदन व स्ट्रॉबेरी जैसी फसलों ने किसानों को कम पानी में बेहतर आय का विकल्प दिया है। किसान परंपरागत चक्र तोड़कर बागवानी और कीमती लकड़ियों की खेती की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। सफेद चंदन की खेती केवल पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। चंदन के पेड़ 10 से 12 साल में तैयार हो जाते हैं। सफेद चंदन के अब पौधे करीब 10 फीट तक हो गए हैं। चंदन की खेती शुष्क व रेतीले इलाकों के लिए वरदान। सफेद चंदन की खुशबू और औषधीय गुणों के कारण दुनिया भर में भारी मांग में रखा जाता है। मार्केट में इसकी कीमत और फायदे काफी हैं। वर्तमान बाजार में सफेद चंदन की लकड़ी की कीमत 13,500 से 14,000 प्रति किलो तक है। चंदन की खास बात यह है कि उसका मुख्य तना ही नहीं बल्कि टहनियां भी 100 प्रति किलो की दर से बिकती हैं। इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, इत्र, दवाइयों और महंगी मूर्तिकला में किया जाता है। धान के मुकाबले चंदन की खेती में पानी की खपत बहुत कम है, जो इसे शुष्क और रेतीले इलाकों के लिए वरदान बनाती है। लोगों ने कहा, बालू में नहीं उग सकते चंदन के पौधे। किसान कृष्ण उन किसानों में से एक हैं जो बदलाव से डरे नहीं। करनाल से पौधे लाकर उन्होंने चंदन की खेती शुरू की तो गांव में उन्हें हंसी का पात्र बनाया गया। लोगों का कहना था कि बालू रेत में चंदन नहीं उग सकता। कृष्ण ने तकनीक का सहारा लिया। आज उनके खेत में लहराते 10 फीट ऊंचे चंदन के पेड़ इस बात का सबूत है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो मिट्टी में सोना उगाया जा सकता है। फिलहाल प्याज का भंडारण कर लें, आय दुगनी करने का अच्छा विकल्प। इस माह रबी प्याज की फसल की खुदाई चल रही है। आवक ज्यादा होने के कारण इस समय प्याज का उचित भाव नहीं मिल पाता। डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, सहायक निदेशक एवं केंद्र प्रमुख NHRDF सलारू करनाल ने बताया कि प्याज का भंडारण किसानों की आय को दुगनी करने का एक अच्छा विकल्प है। प्याज निकालने के लिए 15 दिन पहले सिंचाई रोक देनी चाहिए। रबी फसल की खुदाई के लिए सबसे उपयुक्त समय जब करीब 50% पत्तियां जमीन पर गिर जाएं, इसके बाद एक सप्ताह बाद होता है। प्याज निकालने के बाद 3-4 दिन तक खेत में ही विंड रो क्योरिंग तरीके से सुखाते हैं। अच्छी तरह सुखाने के बाद प्याज की गर्दन को 2.0 से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर छोड़कर काटते हैं। इसके बाद 8 से 10 दिन तक प्याज को छाया में सुखाना चाहिए।
0: 4 से 6 सेंटीमीटर व्यास का प्याज रखें। नंबर 1, भंडार गृह का ढांचा बांस या सरकंडा की जालियों से छप्पर बनाएं। भंडारण की क्षमता 40 क्विंटल तक होती है एवं कीमत 8 से 10,000 तक आती है। नंबर 2, भंडारण से पहले प्याज की छिटाई अति आवश्यक है। मोटी गर्दन वाले, डबल, चोट खाए, सड़े हुए प्याज एवं छोटी गांठों को चुनकर निकाल दें। नंबर 3, 4 से 6 सेंटीमीटर व्यास के मध्यम आकार वाले प्याज ही भंडारण करें। नंबर 4, भंडार गृह पूर्व पश्चिम दिशा में ही करें। भंडारण गृह की छत ढलवादार हो, अंदर से लगभग 4 से 5 फीट ऊंची हो। नंबर 5, हर एक या 2 महीने के अंतराल पर खराब एवं सड़े हुए प्याज को बाहर निकालते रहें। भंडारण के समय प्याज ज्यादा ऊंचाई तक ना भरे।
1: ये थे आज के कृषि समाचार। अगर आपके पास कोई कृषि जानकारी है, आप हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। तो मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। तब तक आप खुश रहें, उन्नत रहें, आबाद रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।
0: और मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।
1: सही रास्ता सही चुनाव सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++ CGPA 3.72
1: कोर्सेज 22+ UG PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस वाईफाई मॉडर्न लैब्स स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। समय समय पर हम आपके साथ अलग अलग योजनाओं के बारे में बात करते हैं जो भारत सरकार की ओर से हमारे देश के सभी देशवासियों के लिए होती है। आइए आज हम आपको जानकारी देते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। किसानों को 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपए देती है सरकार। किसानों की आय बढ़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से दिए जा रहे हैं। राशि 4-4 महीनों के अंतराल में 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दी जाती है। ये दस्तावेज जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ दस्तावेज जरूरी है। किसान का नाम, आयु, लिंग, श्रेणी, SC/ST, आधार कार्ड, जमीन की फर्द, पहचान पत्र के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड या केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार या उनके अधिकारियों आदि द्वारा जारी किए गए किसी भी पहचान दस्तावेज आदि, बैंक खाता संख्या और लाभार्थी का मोबाइल नंबर, ऐसे ले सकते हैं लाभ। योजना का लाभ लेने के लिए किसान pmkisan.gov.in यानी pmkisan.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर योजना का लाभ खाते में प्राप्त होता है। किसान यह आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSS से भी करा सकते हैं। पात्र किसान पटवारी, राजस्व अधिकारी या अन्य नामित अधिकारी एजेंसी के पास जरूरी विवरण प्रस्तुत कर आवेदन कर सकते हैं। ये व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं है। इस योजना में कुछ लोग शामिल नहीं हो सकते। इनमें संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति, पूर्व या वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, नगरपालिका चेयरमैन, जिला परिषद चेयरमैन, केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी और मासिक 10,000 रुपए से अधिक पेंशन लेने वाले ग्रुप डी के कर्मचारी पात्र नहीं होंगे। पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA और आर्किटेक्ट भी इस योजना से बाहर रखे गए हैं। इनके पास खेती की जमीन है तो भी सम्मान निधि का लाभ इन्हें नहीं मिलेगा। आयकर दायरे में आने वाले किसान भी योजना से बाहर रखे गए हैं। ये थी संक्षिप्त जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। समय समय पर हम आपको अलग अलग योजनाओं के बारे में जानकारी देते रहेंगे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता के माध्यम से। अब मुझे दीजिए इजाजत, कोई और जानकारी लेके आपसे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: कुछ अच्छा सुनते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें।
2: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: कच्छ में एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

आपने ट्यूनिंग किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
4: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
3: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
4: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
3: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
4: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
3: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें।
4: www.sdcollegeambala.ac.in।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, Hum Safar, Zindagi Ka.

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो, सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत में लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद में तन्हाई का जाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कवारी है। मैंने सहूलत का गला घोटा, जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता, मगर मैं डरता हूँ। हाँ मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से। मैं हवा में फैली अफवाह से डर जाता हूँ, मैं सैलाब गुमराह से डर जाता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमज़ोर हूँ, मैं खुद से लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक लेकर मैं बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ। मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर है हाथ मगर फिर भी मैं बोलूंगा। हजारों साल की ये सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज तुम मन की, जरा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है, हुआ पैदा है जो इस देश में बाहर से आया है। सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों को जोड़कर भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। धन्यवाद।

रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्यौहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 705641301 पर।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

सुनिए नितिन मुकेश और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो हितसत्ता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो हितसत्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो हितसत्ता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।
1: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
2: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
3: www.sdcollegeambala.ac.in।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
2: हम थे, वो थी,

0: याने याने प्यार हो गया।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: चमहल। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें।
2: www.sdcollegeambala.ac.in

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 8। आज का कार्यक्रम लेखक शैलेंद्र पर आधारित है। पेश करेंगे आरजे किरनी। रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने। निर्देशन भारत सोपोरी का।

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता 90.0 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है कार्यक्रम सुनहरी पल। सभी श्रोताओं को मेरा यानी किडनी का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका एक खास प्रोग्राम में, जहां अल्फाज होंगे, जज्बात होंगे और शैलेंद्र के लिखे हुए गीतों की बातें होंगी। गीतकार शैलेंद्र, जो शब्दों का जादूगर था, जिनके गीत हर दिल की धड़कन बन गए। चलिए शुरू करते हैं ये आज का खास कार्यक्रम उन्हीं के लिखी हुई दो लाइनों के साथ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये गीत सिर्फ अल्फाज नहीं, एक फिलॉसफी है, एक जज्बा है, जो हमें जिंदगी से प्यार करना सिखाता है। आज का प्रोग्राम इस जादूगर के नाम।

संगीत की दुनिया में जब कभी भी गीतकारों की चर्चा होती है तो शंकर लाल केसरी लाल यानी शैलेंद्र का नाम बड़े अदब के साथ लिया जाता है। फुटपाथ पर सोने वाले बेघर बेसहारा इंसान से लेकर दौलतमंद सब उनके दीवाने थे। शैलेंद्र ने अपने जीवन में ऐसे बेहतरीन गाने लिखे कि उसमें कौन अच्छा और किसे नापसंद कहे समझ में नहीं आता। आज भी लोगों के जहन में उनके लिखे गीतों की सुरीली तान सुनाई देती है। गीतों के राजकुमार कहे जाने वाले शैलेंद्र का जन्म 30 अगस्त 1923 को रावलपिंडी में हुआ था, जबकि शैलेंद्र के पूर्वज बिहार के भोजपुर के रहने वाले थे। गुजर बसर करने के लिए शैलेंद्र का परिवार रावलपिंडी आ गया और वहीं उनका जन्म हुआ।

जन्म होते ही शैलेंद्र के पिता ने पूरे इलाके में मिठाई बंटवाई, लेकिन वक्त की चाल को कौन समझ सकता है, हालात कुछ ऐसे बने कि पूरा परिवार आर्थिक बदहाली का शिकार हो गया और फिर ये तय हुआ कि रावलपिंडी छोड़कर मथुरा चला जाए। मथुरा में शैलेंद्र के बड़े भाई रेलवे में नौकरी किया करते थे। शैलेंद्र का बचपन मथुरा में ही बीता और स्कूली शिक्षा भी मथुरा के सरकारी स्कूल से हुई। उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई वही के कॉलेज से की। पढ़ाई में शैलेंद्र शुरू से ही तेज थे। पढ़ाई के दौरान शैलेंद्र को पूरे उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान मिला। उन्हें बचपन से ही कविता लिखने और डफली बजाने का शौक था। मथुरा में कुछ समय बिताने के बाद पारिवारिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि शैलेंद्र को मुंबई की ओर रुख करना पड़ा। कुछ कमाकर अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए शैलेंद्र ने मुंबई के माटुंगा रेलवे स्टेशन पर हेल्पर की नौकरी की। संगीत और कविता का सबसे बड़ा आवारा और साधारण शब्दों के असाधारण गीतकार शैलेंद्र 1948 की उमस भरी शाम में एक कवि सम्मेलन में कविता पाठ कर रहे थे कि उसी सम्मेलन में सूट बूट पहना हुआ एक शख्स उनके पास जा पहुंचा और कहा, मेरा नाम राज कपूर है।

दरअसल राजकपूर उन दिनों फिल्म आग की शूटिंग कर रही थी। शैलेंद्र की कविता सुनकर राजकपूर इतने खुश हुए कि उन्हें आग्रह किया कि वो अपनी कविता को उनके फिल्म के लिए लिखे, मगर शैलेंद्र ने राजकपूर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और बोले, मैं अपनी कविता का कारोबार नहीं करता, मगर वक्त की नजाकत को कौन समझ सकता है। कुछ समय बाद हालात ऐसे पनपे कि शैलेंद्र की माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई और उनके पास एक फूटी कोड़ी तक भी नहीं थी। फिर शैलेंद्र राजकपूर के पास गए और 500 रुपए उधार मांगे। तब तक राजकपूर शैलेंद्र पर फिदा हो चुके थे। उन्होंने अपने फिल्म में शैलेंद्र से गीत लिखवाने का वादा किया था और इस तरह माँ के कर्ज ने उन्हें गीतकार बना दिया। मशहूर गीतकार गुलजार साहब का कहना है, शैलेंद्र जैसा कोई नहीं हुआ दूसरा, उनकी कर्जदार रहेगी दुनिया। वो एक मायने से दूसरे मायने निकालते थे गीत में।

शैलेंद्र को टाइटल सॉन्ग का निर्माता भी कहा जाता है। 1948 में फिल्म बरसात में बतौर गीतकार अपने करियर की शुरुआत करने वाले शैलेंद्र ने जीवन में अनेक ऐसे गीत लिखे आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। शैलेंद्र के बारे में मशहूर गीतकार जावेद अख्तर साहब का कहना है, जीनियस थे शैलेंद्र। दरअसल उनका रिश्ता बनता है कबीर और मीरा से। बड़ी बात को सादगी से कह देने का जो गुण शैलेंद्र में था वो किसी में नहीं था। उन्होंने बरसात के अलावा गाइड, मेरा नाम जोकर समेत कई फिल्मों के लिए गीत लिखे, लेकिन 1962 में बनी फिल्म तीसरी कसम ने उन्हें जकजोर कर रख दिया। फिल्म तीसरी कसम में शैलेंद्र ने बतौरी निर्देशक भी काम किया। लगभग 4 साल तक चली इस फिल्म की शूटिंग ने उन्हें कर्जदार बना दिया। दोस्तों के भरोसे शैलेंद्र निर्माता बने, लेकिन उन्हें नुकसान हुआ। उन्होंने दोस्तों के व्यवहार को देखते हुए बाद में फिल्म नहीं बनाने की कसम खाई। फिल्म तीसरी कसम बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। फिल्म के लिए कर्ज की वजह से वो शराब की लत में डूब गए।

गीतकार गुलजार साहब का कहना है, शैलेंद्र को हिंदी सिनेमा का आज तक का सबसे बड़ा गीतकार कहा जाता है। उनके गीतों को खुरच कर देखें तो आपको सतह के नीचे दबे नए अर्थ प्राप्त होंगे। उनके एक ही गीत में न जाने कितने गहरे अर्थ छुपे होते थे।

शैलेंद्र तो वो गीतकार है जिन्होंने एक नन्हे शिशु का भी अपने गीतों में ख्याल करा और बड़े जान की शिशु जैसे नींद का जब वे लिखते हैं, आ जा रे आ निंदिया तू, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, आंखों में सपने सजाओ रे निंदिया तो आई। शैलेंद्र एक समावेशी कवि है। उन्होंने तकरीबन हर उस भाव के गाने लिखे जो आम इंसान के जीवन में रोज मौजूद रहते हैं। प्यार, काम, अफसोस, दुख, रोमांच, आप जिस भाव को उठा लाए शैलेंद्र का लिखा कोई गीत आपके पास तक चलकर आ जाएगा। उनकी भाषा सरल है, व्यक्ति को शब्दों के जाल में नहीं फंसाते थे। शैलेंद्र को बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। शैलेंद्र एक ऐसे गीतकार थे जिनको 3 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार मिला। शैलेंद्र सिंह को इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2022-23 से सम्मानित किया गया है। शैलेंद्र कुमार को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया।

शैलेंद्र को कलम का कलंदर कहा जाता है। इस तरह कलम का कलंदर कला के कारोबार में किनारे न लग सका। शैलेंद्र सड़क पर आ चुके थे। शब्दों का जादूगर शराब में डूब गया और शराब शैलेंद्र की जिंदगी को पीती चली गई। 13 दिसंबर की 1966 को अचानक शैलेंद्र की तबीयत खराब हो गई। अस्पताल जाने के क्रम में उन्होंने राज कपूर को मिलने के लिए बुलाया, जहां उन्होंने राज कपूर से उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर के गीत जीना यहाँ मरना यहाँ करने का वादा किया, मगर ये वादा अधूरा रह गया। और अगले दिन 14 दिसंबर 1966 की मनहूस शाम ने शैलेंद्र को हम सब से छीन लिया। इसे महज एक संयोग ही कहा जाएगा कि उसी दिन राज कपूर का जन्मदिन भी था, हालांकि उनके अधूरे उस गीत को उनके बेटे शैली शैलेंद्र ने शक्ल दी।

ये भी दिलचस्प संयोग है कि शैलेंद्र का निधन उसी दिन हुआ जिस दिन राज कपूर का जन्मदिन मनाया जाता है। राज कपूर ने नॉर्थ कोर्ट नर्सिंग होम में अपने दोस्त के निधन के बाद कहा था, मेरे दोस्त ने जाने के लिए कौन सा दिन चुना, किसी का जन्म किसी का मरण, कवि था ना, इस बात को खूब समझता था। शैलेंद्र तो चले गए लेकिन भारतीय फिल्मों को 800 गीत दिए जो हमेशा उनकी याद दिलाने के लिए मौजूद है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम का मैं समापन करती हूँ और आपको छोड़े जा रही हूँ शैलेंद्र के लिखे हुए एक बेहतरीन गीत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 8। कार्यक्रम को पेश किया आरजे किन्नी ने। आज का कार्यक्रम आधारित था लिरिसिस्ट शैलेंद्र पर। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने। एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।

जो दे गया फरेब, दे गया जख्मों की बारिश, फिर जिंदगी को संभाल न सके। आज मेरे मौसम जर्द हो गए, शाखों से पत्ते टूट गए और दौरानी सफर छूट गए मेरे यार, रास्ते गुम हो गए। इसलिए शायद तुम हमारे ना हो सके, वक्त बेवक्त तुम याद आते रहे। मेरे अपनों की तरह तुम भी मेरी इबादत में शामिल रहे और मैं सजदों में तुम्ही से मुखातिब रहा, यूं ही बेवजह।

0: बंद कमरों में कोई गुजरता है हर पल मेरे पास से, मेरे करीब से। धुंधला धुंधला चेहरा दिखाई देता है और चलने की आहट सुनाई देती है। इन पैरों को छूने की हल्की जुम्बिश महसूस होती है। कोई तो है जो सुनता है मेरे दर्द को।
1: दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया, पलके झुकी और

ख्वाब थी पर रह गई अधूरी, हसरतों की मीनार दब गई सीनों में, अब पहले जैसे जज्बात कहां, पहले जैसी मुलाकातें कहां, पहले जैसा चांद भी तो अब कहां उगता है आकाश भी। ना पहले जैसी तारों की बारात, उनकी टिमटिमाहट नजर आती है, और ना ही तुम्हारी जानिब से खुशबू मेरे पास से गुजरती है। अब रुक गए काफिले मोहब्बतों के, यूं ही तुम हमारी तन्हाई में याद आते रहे, शायद तुम भुला बैठे हो।

कोई आएगा, मेरा अतीत दोहराएगा, बीती बात याद दिलाएगा, मुझे खुद से मेरी पहचान कराएगा। मुद्दती हुई कोई ख्वाब में आया नहीं, शायद बरसों से मैं सोया नहीं, इंतजार में बीत गए साल हर साल। ख्वाब बनकर कोई आएगा, मेरा हाथ जरूर थामेगा, मुझे ले जाएगा, अपने साथ बिठाएगा अपने पास।

आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? फिल्मी गीतों का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त रमेश मराठा के साथ। अब चाहेंगे इजाजत। नमस्ते।

की सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक निरंतर रहते हैं। हमारी कोशिश है कि हम वही बात करते हैं जो आपसे सरोकार रखती है। हम बात हरियाणवी में भी करते हैं, पंजाबी में भी करते हैं और साथ में हिंदी में भी। अगर आप लोगों और आप सभी श्रोताओं का कोई भी सुझाव हो, आप हमें अपना सुझाव भेज सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम वही प्रसारित करें जो आप सुनना चाहते हैं। कुछ सीमाएं हमारी भी है, भारत सरकार का प्रोटोकॉल है, उस हिसाब से जो भी संभव हो सकता है, जो भी पॉजिटिविटी की बात होती है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं हर दिन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01:45। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और होस्ट भारत सोपोरी। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा स्टेशन FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारे आज के खूबसूरत सफर को यहीं थामने का और आपसे विदा लेने का। लेकिन विदा लेने से पहले, जैसे कि रेडियो वितस्ता की रीत है, हम आपको एक ऐसी सोच के साथ छोड़ जाना चाहते हैं जो कि पूरे दिन को सार्थक बना दे। आज 16 मई है और आज पूरा देश और पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय शांति के साथ रहने का दिवस मना रहे हैं, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। हमारा भारत, हमारी वितस्ता हमेशा से अमन, चैन और सूफियाना भाईचारे की मिसाल रही है। इसलिए आज इस दिन की अहमियत हमारे लिए और भी बढ़ जाती है। आइए इस पर थोड़ी सी तफसील से, यानी विस्तार से करते हैं बात। क्यों जरूरी है शांति के साथ मिलकर रहना? संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इस दिन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के समाजों में मतभेदों को बुलाकर एक दूसरे का सम्मान करते हुए शांति और एकजुटता से रहने की भावना को बढ़ावा देना है। एक इंसान के तौर पर हम जब अलग हो सकते हैं, हमारी भाषा, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन हमारी रंगों में बहने वाला लहू और हमारी जरूरतें एक है। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं बाहर से आएगी, ये हमारे भीतर से पैदा होती है। जब एक समाज के लोग आपस में लड़ना झगड़ना छोड़कर एक दूसरे का हाथ थामते हैं, तभी एक सच्चे और स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। नफरत सिर्फ दीवारें खड़ी करता है, जबकि शांति पुल बनाता है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, लिविंग टुगेदर के फायदे। पहला, सुरक्षित माहौल। जब समाज में शांति हो तो हमारी माताएं, बहनों, बच्चों और बुजुर्गों में सुरक्षा की भावना पैदा होती है, डर का माहौल खत्म होता है। दूसरा, तेज आर्थिक तरक्की। जिस समाज या राज्य में दंगे, फसाद या अशांति होती है, वहां कोई निवेश नहीं करना चाहता। शांति होगी तो रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन फलेगा फूलेगा और खुशहाली आएगी। तीसरा, मानसिक सुकून। अशांति तनाव देती है, जबकि शांति हमें मानसिक संतोष देती है, जिसे हम रचनात्मक कार्यों में अपना दिमाग लगा पाते हैं। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स, यानी इसके दूरगामी प्रभाव। अगर आज हम अपने बच्चों को मिलजुल कर रहना सिखाएंगे तो इसके दूरगामी प्रभाव हमारे आने वाली नस्लों पर दिखेंगे। पहला, आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य। हमारी आने वाली पीढ़ी एक ऐसी माहौल में सांस लेगी जहां बंदूक नहीं बल्कि किताबें और तरक्की की बातें होंगी। दूसरा, वैश्विक मंच पर पहचान। जो समाज शांतिप्रिय होता है, उसे पूरी दुनिया में सम्मान की नजर से देखा जाता है। और तीसरा, मानवता की जीत। युद्ध और नफरत से कभी किसी का भला नहीं हुआ है।
शांति के दूरगामी प्रभाव से हम दुनिया से गरीबी, भुखमरी और अशिक्षा जैसे असली बीमारियों से मिलकर लड़ पाएंगे। तो मेरे प्यारे और अजीज श्रोताओं, रेडियो विदस्ता के माध्यम से आज मैं आपसे बस यही गुजारिश करना चाहता हूं कि नफरत की आग को बुझाइए, मोहब्बत के दिए जलाइए, अपने पड़ोसी, अपने दोस्त, अपने सहकर्मी सबके साथ मिलकर रहिए, क्योंकि जब हम साथ चलते हैं तभी कारवां बनता है। एक अनुरोध और करूंगा, अगर आपको किसी दोस्त से, किसी भाई से, किसी भी व्यक्ति के साथ नाराजगी हुई है, अभी इस कार्यक्रम के समापन के बाद उसे कॉल कीजिए, उसको बोलिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, और एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये कहने के लिए कल को देर हो जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। चलते चलते आज के इस खूबसूरत दिन की इन चंद लाइनों के साथ मैं आप से विदा लेना चाहूंगा। पंक्तियां यूं है, मजहब अलग है, सोच अलग है, पर इंसान तो एक है। मजहब अलग है, सोच अलग है, पर इंसान तो एक है। राहें अलग है मंजिल की, पर अरमान तो एक है। ना बांटें इस जमीन को सरहदों के जाल में, ना बांटें इस जमीन को सरहदों के जाल में, हम सब जिसके साये में है वो आसमान तो एक है। आओ मिलकर महकाएं इस अमन के गुलशन को, आओ मिलकर महकाएं इस अमन के गुलशन को, शांति से रहने में ही छुपा इंसानों का नेक भाग्य है। शांति से रहने में ही छुपा है इंसानों का नेक भाग्य है। बस आज के लिए इतना ही। जाने से पहले आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 17 मई 2026 रविवार को जो कार्यक्रम लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर वंदे मातरम से, और लाएंगे आपके लिए एक सुविचार, और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे भक्ति संगीत, और आप सुनेंगे शब्द और गुरबानी भी। 7:05 पर कार्यक्रम आओ गांव चले, हरियाणवी सेगमेंट के अंतर्गत एपिसोड 8 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पेश करेंगे नेहा धाकड़। 8 बजे आप सुनेंगे तुम्हें याद हो कि ना याद हो एपिसोड 10, ये मदन मोहन पर तैयार किया गया कार्यक्रम है, जरूर सुनिएगा ये। 8:30 बजे किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट, और कल के लिए हम आपके लिए लाए हैं पॉडकास्ट एपिसोड 16 आप ही शिक्षक आप ही पुस्तक। 9:30 बजे फिल्मी किस्से एपिसोड 3, कल हमने फिल्म चुनी है गोलमाल, पेश करेंगे दीपक कश्यप, और 10 बजे इनसे मिलिए, हमारे साथ होंगी माधवी शर्मा। संगीत की सभा जारी रहेगी, और 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 बजे शाम गजल, 7 बजे सरगम एपिसोड 7 पेश करेंगे आरजे किरनी, और सुहाना सफर 8:30 बजे पेश करेंगे रमेश मराठा, कल की कड़ी है शमी कपूर और शमशाद बेगम। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का, और आप अपना फीडबैक जरूर हमें भेजिएगा हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब अपने दोस्त रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत, कल सुबह फिर हाजिर होंगे नई ऊर्जा, नई ईंधनों और नई दुनों और नई बातों के साथ, सिर्फ और सिर्फ FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए, और बड़े बुजुर्गों का आदर और सत्कार करें। मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।